युतिः एतत्तदित्यनिर्देश्य चैकानुदचिदाकृतिः एवमित्यागमाबोध्य चैकभ

लब्धरूपा लब्धचित् लब्धवाञ्छिताय लब्धपापमनोदूरा लब्धाहङ्कार दुर्गमा लब्धशक्ति लब्धदेश लब्धैश्वर्यस्तमोन्नतिः लब्धबुद्धिर्लब्धलीला लब्धयौवनशालिनी लब्ध